0: रेडियो सारंग 107.8 FM। जय हे
1: तुलुवलानी, रेडियो सारंग 107.8 FM। रंग रंग दा बदक इत्ते तुलु प्रसारा।

0: क्या करते हो?
1: क्या कर रहा हूँ?
0: भैया छोड़ो ना।
1: क्यों छोड़ूं?
0: प्लीज समझो ना।
1: क्या समझूं?
0: वो लोग देख रहे हैं।
1: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
0: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊं?
1: आओ ना।
0: नो।